0: माशाल्लाह सवेरे सवेरे ये चिराग किसने जलाया सवेरे सवेरे. एंड ऑफ कोर्स दिस कलाम वाज ओरिजिनली प्रेजेंटेड बाय द ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ द साबरी ब्रदरहान. जी हाँ, बाबू गोरा अशरफी साहब, यू गॉट दैट राइट माय ब्रदर. नो डाउट द साबरी ब्रूज डिड जस्टिस टू दिस कलाम. एंड ऑफ कोर्स द आर्टिस्ट दिस इवनिंग दैट आई फीचर्ड वाज असलम अकरम वारसी, एटलीस्ट मरहूम, हु सैडली पास्ड अवे अ फ्यू मंथ्स अगो. एंड ऑफ कोर्स वी मेक दुआ दैट अल्लाह रब्बुल इज्जत ग्रांट्स हिम अ लॉफ्टी अबाउड इन जन्नत. शुक्रिया भाई अब्दुल मुनाफ साहब, बोत्सवाना के रहने वाले हैं. एंड ऑफ कोर्स देन वी आल्सो हैव अब्दुल गफार शेख फैमिली, हमारे जुलेखा शेख एंड अब्दुल गफार साहब, our elders, and they also listen to the program all the way from Changat. Shukriya. Nazir Khan sahab, Chatsworth ke rehne wale hain. Aur hamare dost, another Qawwali artist, and that is Feroz Pakeh. Shukriya Feroz Pakeh sahab. And Shahid Mia is also tuned in. To lijiye ab हज़रत अली करमल्लाह वजल करीम की बेकस पनाह में चलते हैं. एंड लिसनिंग टू अस दिस इवनिंग इज शहनाज खान.
1: जब भी गमों ने मुझे घेरा, मैंने तेरा नाम लिया मौला, तेरी मोहब्बत

छोटे मजीद कवाल साहब, हर तरफ मेरे ख्वाजा है। एंड यस, ख्वाजा हिंद वली अली रहमा के बेकस बना में एक कलाम पेश कर रहे थे। एंड माशाल्लाह, देयर सो मेनी ऑफ यू लवर्स ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन दैट हैव ट्यून्ड इन एंड आर सेंडिंग सच ब्यूटीफुल मैसेज। एंड वन ऑफ आवर रेगुलर्स एंड वन ऑफ द एल्डर्स ऑफ आवर कम्युनिटी एंड दैट इज जनाब रियो सत्तार साहब। जी हाँ, रियो सत्तार साहब, ये आपकी मोहब्बत है, मेहरबानी है। सैडली माई गुड सिस्टर रजिया बहन हैज बीन हॉस्पिटलाइज, बट ऑफकोर्स शी इज बैक होम नाउ। दुआज आर विद यू रजिया, गुड टू सी यू अराउंड इंशाल्लाह। होपफुली वी विल सी यू इन द महफिल्स अगेन। शुक्रिया अगेन रजिया बहन। स्माइली दाऊद साहब बेव्यू के रहने वाले, वन ऑफ आवर रेगुलर्स एंड अ मैन दैट आल्सो नोज हिज म्यूजिक। साथ ही साथ वी हैव हाजी मोहम्मद एंड फातिमा बीबी सुलेमान ऑफ चैट्सविथ आल्सो ट्यून्ड इन। अबास शेख नॉर्थ बीच के रहने वाले हैं। महमूद खान ऑफ जोहान्सबर्ग, यस ही वाज एट द मिलाद प्रोग्राम, द मालिक मुर्तजा मिलाद प्रोग्राम टुडे ऑल द वे फ्रॉम जोहान्सबर्ग। शुक्रिया महमूद खान साहब, एंड ऑल्सो टू ऑल दोज ऑफ यू दैट केम एंड हैड अ वर्ड विद मी। शुक्रन जजाकल्ला टू यू ऑल ऑफ यू। इंद्रानी वसंती कानगी रेगुलर्स ऑफ आवर्स, दे लव द कवाली दिस पीपल। और साथ में इस्माइल खान केपटन के रहने वाले भी हैं, इज ऑल्सो लिसनिंग थ्रू टू अस दिस इवनिंग। एंड फ्रॉम डंकनविल इन वरानिखिंग, यस वी गॉट अहमद मोहम्मद सादिक साहब। अहमद सादिक साहब पॉपुलरली नोन एज मामू, शुक्रिया अहमद साहब फॉर ऑल्सो ट्यूनिंग इन। एंड देन वी हैव हाजी मोहम्मद हनीफ साहब एंड हिज फैमिली कौसर शियार एंड खैरुन निसा फ्रॉम फिनिक्स ऑल्सो ट्यून्ड इन। एंड ऑफ कोर्स माय ब्रदर सॉली हुसैन, अनदर मैन दैट इज अ कवाली फैनेटिक, एंड ही सेंड्स अ ब्यूटीफुल कपलेट कि दिल को जब जिक्र हक का सहारा मिल गया, दिल को जब जिक्र हक का सहारा मिल गया, हर गम के अंधेरों को उजाला मिल गया। मैं खुद को ढूंढता था जहां भर में मगर, मैं खुद को ढूंढता था जहां भर में मगर, अपने रब को पाया तो खुद का पता मिल गया। शुक्रिया भाई सॉली हुसैन साहब। तो लीजिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आइए अब हम पाक पतन की तरफ चलते हैं। एंड आई नो ऑल द लवर्स ऑफ बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज आर वेटिंग पेशेंटली। साथ ही हमारे महमूद शेख चिश्ती साहब पीटर मैरिजबर्ग के रहने वाले हैं। फारूक खान एंड इस पंचायत ग्रुप आल्सो फ्रॉम पीटर मैरिजबर्ग, शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट इमरान मलंग एंड द रेस्ट ऑफ द क्राउड। एंड यस, आई ऑल्सो मेट अब्दुल्ला मलंग टूडे एट द फंक्शन एज ही वॉज ऑल्सो दे एंड ऑल द मलंगदार इज दैट वे दे एंड चाचा अजमेरी वॉज ऑल्सो दे। तो लीजिए आप सबके लिए या फरीद बा फैज अली फैज।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से।